cream, etc. When your throat will be okay, then of course you can have ice cream. Yes, husband disappointed. But she's right. Went home, no ice cream, warm water drinking, no cold drink. After 1 week, he had a desire, ice cream. So the level of our consciousness is different. Sushupta, Jagrat, Sushupta, Swapna, these are the three levels of the consciousness. Hum Jagrat hai abhi. Jagrat, we are awakened and we see what is happening here, left and right. But then we go to the sleep. Now, sleeping, it's not easy to know your sleep. क्या आपको पता है कि आप जागृत अवस्था से सुसुप्त अवस्था में किस घड़ी किस सेकंड में आप बॉर्डर को क्रॉस किया है फ्रॉम विच सेकंड हाउ डिड यू केम टू द स्लीपिंग लेवल यू वेर अवेकन एंड हाउ डिड यू स्मूथली enter into the sleep. If you can research this and become aware about that, how you are sleeping, that second, this is the second ki baat hai. They said, the driver said, micro-sleep. Micro-sleep se accident hota na. Thodi si aankh ki jokha aya, or accident ho gaya. So it is from awaken to the sleep. Just we go in the bed, put our head on the pillow and said, now I will sleep. But when did you come to the sleep? This is the work of the yogi. Achha, okay, doesn't matter. Aap aage. गहरी निंद्रा के अंदर हैं आप सडनली यू आर इन शिकागो फ्रॉम न्यूयॉर्क ड्रीम स्वप्न सो हाउ डिड यू वेंट आउट ऑफ दिस फिजिकल बॉडी थ्रू द एस्ट्रल बॉडी यू आर इन द शिकागो इन द टेम्पल ब्यूटिफुल न्यू टेम्पल एंड यू आर डूइंग आरती एंड एक्सेट्रा Swapna. How did you went this Amara Sukshma Sharir, Stul Sharir se bar kaise nikla? Aur kahan chala gaya, kis speed se gaya? Kahan to Chicago aur kahan New York? Aur New York ke andar mein bhi Queens aur Queens ke andar bhi Shiv Shakti Mandir. और शिव शक्ति मंदिर के अंदर भी ऐसे देवता बड़े महापुरुष ईश्वरीय विभूति हमारे हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज और आशीर्वाद दे रहे सभी को पाटी जी देखिए मिराकल्स बट नाउ यू आर इन शिकागो कैसे गए हाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू टुक अब क्या होता है कि मच्छर काटता है सडनली मस्किटो बाइट्स यू यू वेक अप विद इन नो टाइम शिकागो से यहां किस स्पीड से आप आए और जागृत हो गए स्वप्न से जागृत सो योगा समाधि गेटिंग ए Higher consciousness in samadhi, first you have to mastery, awaken, sleep and dream. Jagrata, sushupta and swapna. Swapna. Swapna kya hai? Swapna is our reality.
The dream is our reality.

0: is that reality which we cannot realize, and we dream, and we try to fulfill our desires through the dream. Yes, Kamlesh ji, सही बात है ना? अब क्या होता है कि वो सज्जन जिसको आइसक्रीम खाना था, रात को आ गया स्वप्न जोर से, ओ हो महाराज क्या कहना है, इतना बड़ा कटोरा भरा हुआ आइसक्रीम जिसमें पिंक है, येलो है, व्हाइट है, छोटे छोटे लड्डू की तरह. सो नाउ ही इज ड्रीमिंग इन अ नाइट. His wife said in him in the dream, "Darling," said, "now you are healthy, let's go and have ice cream." He said, "Oh my dear, thank you. I will pay you today ice cream." She said, let's go. He is dreaming. Now they went to the shop. They sit there on table chair and order the ice cream bowl, very big, beautiful bowl. Can you imagine, children? Ice cream. And very nice spoon. Silver spoon. That's a very expensive shop. And now wife said, "Enjoy." What? Enjoy. My dear, the joy which you want to enjoy, that joy is not that enjoy. The joy of that enjoy is less than the sorrow of that joy. So the enjoy which you want from that joy of the enjoy is less than the sorrows of the joy. Now he take the spoon, ice cream, and the spoon comes near the lips. And what happened? Alarm baj gaya. Hari Om. In the dream, ice cream comes close to his lips and alarm ringing. Kya ho gaya? What happened? Woke up. Dream is gone. Now what happens? He is so disappointed. And wife is sleeping, snoring. Oh, Ram, Ram, Ram. Now, when even in the dream you could not fulfill your desire, you wake up, this is a more painful, more disappointment. We disappoint. What happens? That desire which we could not fulfill even in our dream, it goes to the subconscious. And it dwells in subconscious for a long time. Again, you try to eat ice cream, but you cannot. Again, you got a cold, and you are a good singer, and your master who is teaching you singing, he said, "No, for your vocal cord is not good to eat ice cream." Oh God, again. So, slowly, slowly, what happens? That desire comes through the dreams and goes back and comes. It went to the unconscious level. Now, husband, he loves his wife, but suddenly something happened. He can't go with her shopping. And whenever they go outside together, they are quarreling and comes back home. So what happens? They go to the psychiatric doctor. And what doctor said? "Oh, you are, he's a psychic." Both husband and wife comes at home, looking in the mirror. I'm psychic. Yes. Doctor is right. When doctor don't know exactly what is the cause in this, then it's very easy to say it is a psychic. When the bhakta comes to Guruji and tell Guruji, I have this samasya, this problem and this problem, to Guruji kehenge, haan achha hai, but it is your karma. Wo karmo pe dal dete hai, are you, how to get the chuti to psychic? What is a psychic? Psychic is that kind of emotion which you could not fulfill, and it is in your unconscious level, and now that has lost the form. If you know what is the cause or reason, you can solve your problem, there will be no psychic problem more. So they went to the psychiatric treatment, to psychologist, and they were analyzing every day, coming once a week, one day, and they were asking what you did and what you did not, and this and this. And one day, one point came, and that point came about ice cream. And his wife said, yes, I prohibited my husband few times not to eat ice cream. Do you remember? He said, yes. Yes, you did give me ice cream. Yes, you were dreaming. He said, yes, I was dreaming. Then the psychologist said, okay, finish today's, our talk is finished. I would like to go with you for a little bit in the market. Let's go. And he lead them to the ice cream shop and sit there, and all three of them said, let's enjoy the ice. They ate the ice, and he was so happy, no anymore depression. So this is our mind. Therefore, yoga is that kind of science of the body, mind, and consciousness. So the mind. So Kundalini, Ida, Pingala, Sushumna, and the fourth one is called Vajranadi. Vajranadi begins from the small and big toe. Vajranadi controls our immunity in the body. Vajranadi controls our Ida, Pingala, Sushumna. Vajranadi controls our heart, that we don't get a heart attack, and also brain hemorrhage. Vajranadi begins from the big toe and second toe, and it goes through and is supporting the Sushumna Nadi. Like when we build a building and we have earthing cable. So Vajranadi is like an earthing, so there is no any bad things, attack happens to our body or mind. And therefore, you have to practice those certain postures of yoga that you can avoid such accidents. Mind. Let's come to the man. Man kya hai? Man lobhi, man lalchi, man chanchal. Man chor. Man ke mate mat chaliye, ghadi palak, man aur. Man lobhi, man lalchi, man chanchal, man chor. Man ke mate na chaliye, ghadi palak, man aur. Mind is a greedy. Man lobhi, man lalchi. Mind is full of the desires. Man chanchal, mind is restless. And man chanchal, man chor, and mind is also the thief. No? Chori kari deta hai. Bhagwan Krishna bhi usko nahi rok sakta hai, chori karne mein man makhan chor deta hai. पता है भगवान को कि मक्खन चोरी कर दिया और हमारे मैया को जाकर के वो सभी शिकायत करेंगी. तो मन चंचल, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए. डोंट फॉलो योर माइंड. क्योंकि माइंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दैट्स इट. व्हाट इज अ माइंड? मन का देवता चंद्र. दैट्स वाई बिसाइड मी हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज. देखिए वो हमारे देवता है. ही इज कंट्रोलिंग. इसीलिए तो ऐसे महान पुरुष पास में बैठते हैं तो हमारे को सावधानी से बोलना पड़ता है. एवरीथिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइंड इज द मून. एंड मून इज एवरी डे व्हेन मून कम्स आउट और मून राइजेस नेवर इक्वल. चंद्र हमेशा एक सरीका नहीं आता है, घटता बढ़ता रहता है. वैसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है. यही मन का धर्म है क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है. एंड मून मीन्स इमोशन. इन मोशन यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन. इमोशन एंड इमोशन मीन्स वाटर. सो चंद्र जो है पानी का प्रतीक है और वो जल जो है पानी वाटर. वो वाटर इज चंचल मूविंग. देर आर द वेव्स. सो यू आर इन द मोशन इज द इमोशन. बट व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन यू हैव सम टाइम इज ए हॉरिकन और वाह फ्लड. राजा योगी अग्नि जल जिसकी उल्टी रीत. राजा योगी अग्नि जल जिसकी उल्टी रीत. सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत. इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना. राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात. हाँ वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे. हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे है. जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था या टेलीफोन भी नहीं मिला था. ये बातें होती है. माइंड. नाउ व्हाट इज द माइंड? सो माइंड हमारा जो है, माइंड इज लाइक ए कैमरा. इज गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन and transferring to the subconscious. And what is the hidden written in the subconscious brings up and gives to the consciousness, intellect, buddhi. And what is a buddhi? Buddhi ka dharma kya hai? Buddhi ka dharma hai uska judgment dena. So intellect gives the judgment and mind brings and goes. Therefore mind has no responsibility. It's only coming and going, coming and going, coming and going. So that is a mind. Intellect is giving judgment, but viveka, that is which leads us further. So yoga, आसनास, प्राणायाम, चक्रास, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्रार. दिस आर द एट चक्रास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी. तो योग अनंत है. अनंत हरि कथा. साथ में आता है आसन. आसन प्राणायाम, ध्यान, धारणा. तो आसन कई प्रकार के आसन कहलाते हैं. ये महाराज श्री का जो ये गद्दी बिछी हुई है इसको भी आसन ही कहते हैं. महाराज जी आपके आसन पे बैठिए वो भी आसन है. आपका आसन कहाँ लगेगा, रात को शयन कहाँ करोगे, वो भी आसन है. और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है। आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, फिर मेडिटेशन होता है। ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है। गिलास इज मोशनलेस, द लिक्विड इनसाइड इज ऑल्सो मोशनलेस, बट एज सून एज आई टेक, गिलास इज मूविंग, लिक्विड इज मूविंग। सिमिलरली इफ आवर बॉडी इज कंफर्टेबल एंड मोशनलेस, आवर माइंड इज ऑल्सो स्टेडी। संकल्प विकल्प के अंदर में धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आता जाता है, फिर मन मेडिटेशन हो जाता है। तो दैट्स अ लॉन्ग वे आसन। अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे। तो अब बस हो गया पूरा। धीरे से आपको कुछ बताता हूं, सभी बैठे हैं। अरे आए तो खाली बातें करने से तो भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटते क्या, बातों से भूख नहीं मिटती है, बात करने से पेट नहीं भरता है। टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग कंपेयर्ड विद द ग्रेम ऑफ प्रैक्टिस। तो खाली बातें करते जाओ, बातें करते जाओ, पेट नहीं भरेगा। अरे कुछ खाने को तो दो, एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा, तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही। भूखे को बताते जाओ कि हाँ श्रीखंड आ रहा है, ओहो हलवा आ रहा है, पूड़ी आ रही है, और क्या आ रहा है, अरे समोसे आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, अरे जलेबी भी बन रही है। वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या, कुछ नहीं आया। डपोट संघ का नाम सुना आपने, आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं अभी तक नहीं सुना,
0: सुना दूं? हाँ देखिए ये भी तो बात है, हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहते हैं डपोट संघ, कावल है कि नहीं? तो डपोट संघ की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा, ठीक है? एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड। एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे। समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है, शिव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः,

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं। ये शंख इतना चमत्कारिक है, ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है। आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मुला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। अरे एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में है, तो दोस्त के वहां गया। तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहाँ चले गए थे, कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा शंकर दादा मरी गया क्या? हाँ मरी गया बापू, तो शू गया शंकर दादा ने, शू कही लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे हैं क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के 8 और मैं 9, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आगे। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही है, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आ करके वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया, और वो जो नकली से लेके आया उसको उसके धोझोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान कराओ ना, क्या कराए। और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे, और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए।
भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका संक? अरे बेटा, तेरा संक वो चुरा गया, तेरा दोस्त असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे, क्या मैं दूसरा संक देता हूं? अरे वो क्या करता है संक? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा, कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1000 रुपया तो वो कहे 1000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है 1000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो, के लाओ देओ, कि क्या धक्का दे? धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना, अरे तू क्या नहीं दे रहा है कि नहीं, मेरा नाम है डपोल संख। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक, कि यह ऐसे कैसे हो सकता है? कि देखिए, हे शंकर भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंख देव कहते, अच्छा भक्त आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ, 10 सोना आ जाएगा। कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था, भगवान उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि भाई अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया, और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले ले भाई? कि हाँ दीजिए, कि क्या धक्का दूं? अरे ये क्या है? कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है डपोल संक। तो तब से डपोल संक बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता है। क्या कहो जी? हाँ, तो डपोल संक जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संक वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो he went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shiva appeared, said, Bhakta, my devotee, bless you, what you want? He said, I want money, I want this, I am very poor. So Bhagavan said, okay, I give you these coins. And whenever you want something, tell these coins, make puja, clean, flowers, incense, etc. And then you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you, Lord. Thank you, thank you. He went. On the way, he had one friend. He stayed overnight there. And what he told the friend, what is this?
So in the night, the friend took away the real coins and put in the fake coins. And then the man went next day. After a few days, he reached his village and he said, village people, now I have a siddhi, perfections. God gave me everything. Now I invite you all for the lunch, a beautiful buffet. So I said, hey Shankadev, oh Lord, please provide the best food for all. And there's nothing happened. Because the real cons, he took it away. So man was disappointed very much and he went again to the ocean, and then Shiva gave him another one, and that one is that whatever you ask to have, if you ask for $1,000, he said, no, take $5,000,000. So you don't have to ask always. So he said, okay, give me please. He said, what? I can't give you anything, I'm only speaking. I'm not giving. Only promising, but there is nothing. So that is in Rajasthan, in Hindustani language, is some kind of a joke. So you know why? Because people are sleeping. And then Swamiji gives such a nice chutkala. Wo chutkala kya hai? Wo bhojan ke andar chutney. चटपटी चटनी किया तो वो जीवा के अंदर में फिर स्वाद आ गया. और ऑल राइट नाउ एक्सरसाइजेस. ऑल राइट तो आप सीधा बैठे. वेरी गुड. सिट स्ट्रेट. बहुत अच्छा. वेरी गुड. Now, stretch your legs. बिल्कुल सावधान. आपको बिल्कुल हल्का एक्सरसाइज बता रहा हूं, बट इज पावरफुल. ठीक है. सो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे रहे. घुटने को जोड़ दो. यस. और लेग्स लिटिल स्ट्रेट आउट. पैरों को थोड़ा लंबा कर दो. बहुत अच्छा. इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप एंड इंटरलॉक योर थम्स. स्ट्रेच योर हैंड्स मोर अप. तो ये साइड मसल्स stretching and hand down on the thighs. Once more, inhale and exhale. Inhale Exhale. Inhale and look up to the ceiling. Exhale. Now inhale and stretch your hand sidewards and above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna, bolna mat. श्वास लीजिए एक और दो. दूसरा था
एक और दो। अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और केहुनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए, घुमाए, एक श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए।

0: और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थूली को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट And inhale up. Good. 10 times. Swas lena, sir ko dekhi upar aur swas chhodte hue Jalandhar band. Akashi mudra aur Jalandhar band. Bahut acha, bahut hi acha. Ab पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो वो सब टू वन टू अब एक स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू एंड इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इस एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव Other direction, one, two, three, four, five. बहुत अच्छा पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते हुए वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे एक श्वास लीजिए दो श्वास निकालिए तीन श्वास लीजिए ऊपर चार श्वास जोड़िए और अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना एक दो, चार, स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। एक, मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं, आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है, वाह। अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में, अरे वाह। अब इसको बंद करें या खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। मैं देखो, खाने का बढ़िया हो तो मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा नहीं कि हाथ को लुप्त या पान, सीधा बैठो ही, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस। And now only open the palm, the left hand, and look to your palm and tip of the fingers. But right hand is holding your wrist. Dekhiye, aapka haath bilkul looks like a pail. Ab dekhiye, haath ko aur dekhiye, anguliyon ko dekhiye, look your fingers, look your palms. And now release your right hand and look to palm, what's happening? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखा है, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहाँ है, उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज, थ्री टू वन, हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो है कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस डू इट लाइक दिस, जो ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में एक चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे वहां क्या आएगी तो महाराज जी थोड़ा बहुत चमत्कार करें। ठीक है चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं हाथों नाउ मिरेकल। नाउ यू विल हैव ए मिरेकल, यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वॉन्ट, सिट इन योगा पोस्चर, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स, हाँ दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ वो तो जाना चाहिए, लक्ष्मी चंचल है, पानी तो चलता भला बड़ा गंदेला होए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करिए हाथों को, अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 times मोर टिकलिंग और लाइक ए नीडल्स गोइंग थ्रू योर पाम्स दैट वी शुड फोल्ड योर हैंड्स, फोल्ड योर हैंड्स एंड नाउ रब द पाम्स

गुड अब ऐसे 1 इंच दूर रखो। अब ऐसा करिए, नीडल मूव हो ही नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है। और ऐसा करिए धीरे धीरे, वो प्रेशर आता है ना, मैग्नेट। और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम। देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन। सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है। कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं। तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out, self healing. To bas aaj to itna hi, that's all for today. Session is over, it was 1.5 hours.

धन्यवाद कीर्तनकारी। अब वो क्षण आ गया है जब हम स्वामी जी को सुनेंगे। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के प्रवचनों से हम आशीर्वाद से हम लाभान्वित होंगे। मैं परम आदरणीय गुरुदेव को वंदना करता हूँ कि वो पधार कर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीष प्रदान करें। आदरणीय

गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम हमेशा कहते हैं, लेकिन कहना चाहिए, जानना चाहिए, जब इस विषय में आना होता है। हमारे आराध्य भगवान सिद्दीप नारायण महाप्रभु जी, देवपुरी जी और आराध्य भगवान माधवानंद जी, माधवानंद जी आप जानते हैं सभी, आप जानते हो ना? यस, जानते हो। कितना जल्दी में चले भूल गया। स्वामी माधवानंद जी, बड़ी खाटू नागौर और राजस्थान, सारा विश्व और यही इसी शहर में प्रभु और ये माता जी के पिताजी वो विराज थे। महान ईश्वरीय माधवानंद जी ने सारे विश्व के अंदर सब कुछ दे करके मुझे दिया। और मैं जब गुरु जी के यहीं था और मुझे विदेश में चला गया, जब तक मारे तक डरती हूँ हती गुनी, जहाँ तक मैं उस गया उस देश के अंदर, जब गया देखा, लेकिन जो भी है वो सब खाने वाला मांस मदिरा, जो भी देश है अलग, भले ही कोई जिद्दो ना आदमी ठीक नहीं खा सके तो वो है, नहीं तो मेरे जाना था मैंने क्या करना है। तो मैं योग का 3-4 देशों के बाद में, तो कि योग करते हैं लेकिन मांस खाना चाहिए, मैंने कहा कि नहीं, और आपको भी नहीं करूं दूंगा। अगर आप योग करना चाहोगे तो मांस मदिरा दे दो, छोड़ दो, और तो मैं दूंगा। तो कोई 2-3 जना ने कि हाँ, 4 दिन को हाँ, 1 साल। तो हमारे वेदानंद महाराज योगेश जी, ये मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा। तो करते करते आपको क्या कहूँ कि जो जितना हमारे यहाँ इंडिया में, यहाँ पर राजस्थान में, जो पहले सब मांस नहीं खाते थे, अब हमारे राजस्थान से आगे जा कर के दूसरे हमारे सब देश के अंदर हैं, मैंने उन सभी को इतना करा दिया कि मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाएंगे। वो आज हमारे वहां ज्यादा है। आपने कहा आप बता रहे थे और बार काम गए थे, आप गए थे वहां जाके, आप वो भी रहते, हाँ सर साहब, तो वैसे जाकर के उनको करने का क्या करना है। एक नंबर वन, नंबर टू, शॉर्ट एंड स्वीट। सुबह उठते हैं आंख खोला नहीं, जनेवा आंख खोला नहीं, कठे पड़े के उठो जने, तो एक शब्द को क्या कि मेरी आंख, मैं मानव हूं, मनुष्य, मैं एक मनुष्य हूं,
उठो गए आज खोलो पहला उसी समय हाँ कि मैं मनुष्य हूं बस इतना ही। उसके बाद में पगे नीचे देते हैं तो कहते हैं माँ माता मैं इस पृथ्वी पर पग डोलूंगा ही। माता जी है माँ है दादी है तो उन्हें तो क्यों और एक गीपरी माता जी वगैरह गीपरी तो भी माता जी को कहना था कि हे माँ जी अब माता जी नहीं लेकिन पृथ्वी माता है सारे विश्व के अंदर मातृ हम। उसके बाद उठ के जाकर के पानी पीने के पानी पहले सबसे ज्यादा है जल जो है जल सो जगदीश जगदीश जो जग सर्विस जगदीश भगवान जो है तो अपने अगर देखें एक बार के पानी कितना है तो कितना पानी है वृक्ष वगैरह जो कुछ है पृथ्वी पे जो भी तो जाकर के जाता है उठ के जावा नहीं यानी यूं हाथ में थोड़ा पानी ले लो जावा पानी कटो पानी लेवा कना उठ गए बस एक एक ही दो तीन बूंद बूंद और वो बूंद उसको देखते ही कहेगा कि मैं सर्वत्र सबके अंदर मैं हूँ और वो लगते ही सारे शरीर के अंदर में जैसे कोई किसी को इंजेक्शन लगा दे नहीं तो जोर जोर करे नहीं वैसे ये जल जगदीश जो है ऐसा करते पूरे शरीर के अंदर हो जाएगा तो देखो कि आपको बहुत अच्छा रहेगा सबको और पृथ्वी वो वगैरह सभी जो है। अब मनुष्य के जब घर पे रहते हैं सोते हैं तो वहां पर जानवरों को सोते समय माता पिता को बच्चों को उस कमरे में जानवरों को मत टिकना और देखिए कि गाय के बछड़े का तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया और एक कुत्ता जो है वो कुत्ता ने लिसेते लेने कुत्ता ने कहने सोए ने हुए हाँ हुआ घड़ो बड़ी को अच्छी बात नहीं कुत्ता भी तो है ही है लेकिन वो कुत्ते ने जो वो धनी तो बैठे उठे हुए ने वो कुत्ती बने कहते बीच में या वो भावनी माँ उठे घरे में तो कुत्ते वो लेने जावे देख लीजिए वो कुत्ता है अच्छा है बहुत अच्छा है मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन वो तो वहाँ पर भी उन लोगों का इतना हो रहा है लेकिन मैंने हम उनको कह दिया कि एक तरफ खिलाओ कराओ सभी लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता है। और उसके बाद में मुसलमान बहुत अच्छे हैं वो उसकी माँ को बाप को क्या शब्द में बोलते हैं कहीं गए मुसलमान कहीं गए उन्होंने उसकी माँ को उसके बच्चों का जो क्या कहीं कहते हैं उन्होंने हैं तो अबा है ना हाँ तो वो अबा है ना अबा अबा तो वो उनके बच्चा बच्चे सब उसका वो करते हैं वेरी गुड। अब ऑस्ट्रेलियन अब जो ऑस्ट्रेलियन का कहना हारा मैं तो घर वहीं बैठे ही रहूं तो वे है तो वो उसका ही ऐसा जो उनके गांव में वो कहते हैं वो करते हैं तो हाल तक वो वैसा क्या कर रहे हैं और वेर और दूसरा है तो एक बता दूं कि अपने हिंदू हमारा हिंदुस्तान के अब हिंदुस्तान के जो है कहीं केवम माँ केवम और कहीं केवम पिताजी कहो
टावर हो गए, ये कह रहे अब आपके यहाँ बता दो मेरे को इस हिंदुस्तान के अंदर में, मेरे विदेश में जाने से पहले तो अच्छा था, और अब वहां से चले तो आप बता दो आपके बच्चों का कई के वो आप बोले चोरी भी हो सारा भी हो कहीं के आपने टावर रखे थे हैं, और माँ ने कहीं के वे बाप ने कहीं के वहां में पता नहीं मन मन तो ठाई को नहीं, मैं तो इतना कोई को नहीं है कि नहीं। तो आपके बच्चे का आपका नाम आपका क्या, हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, हमारे भगवान के नहीं है, और वो भी उतना उनका वो वैसा नहीं है, तो क्यों आपके भारत के अंदर हम सब छोड़ दिया। ठीक है कि हम हिंदुस्तानी है अटे, लेकिन मेरे विचार में जब कहता हूं कि आप नहीं रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, आप बोलते हो ना सभी को, कौन कौन बोले चावरों ने बच्चों ने, अब इसके पास में करने से मैं क्या करूं। मेरे को विदेशी कहते हैं कि महाराज जी आप ऐसे करते हो, ये क्या हो रहा है। अब दूसरा है कि योगा, योगा योगा जो है मेरे योग का जो है कि सारे विश्व के जितने भी हैं वो सभी योगा उसका नाम कराता है। तो ऐसा है कि जो भी हमारे साधु संत जो योगा योग का करते हैं ना, तो कोई उस गुरुजी का उनका नाम उसका कराएंगे, उनके पिताजी का वो गुरुजी का नंबर है, तो हमारे साधुओं का और सभी का उसके पिता का जो भी है वो उन्हीं का नाम देंगे, जैसे माँ उसी के बेटा बेटी का नाम देंगे। अब वो उसको तो छोड़ दिया, अब जितने योगी हमारे हैं, हमारे योगियों का मेरा, उन सबको कैसा कर दिया कि छोड़ दिया, और इसके अंदर में यह भी कर दिया कि दो शब्द नहीं करना है, कि अभी जो योग वाला काम करेंगे कि दो शब्दों से नहीं करेंगे कि क्या कि मांस और कोई और मदिरा, ये हम नहीं बताएंगे कि नहीं करेंगे। साधु कहते हैं यहाँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको नहीं कहूँगा जो करो या कर मत करो। और मेरे जो योग का कराया है आज तक मेरे पास में मेरे टावर बैठे हैं यहाँ 5 साल तक, उनके बच्चे उनके आगे करके उनको सबको अपना हिंदू हमारा बताया है, ऐसा अच्छा बताया, आश्रम बताया है। तो आप ऐसा मत कहना, मेरे को दुख मत कराना मुझे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगा इन डेली लाइफ एंड इस योगा करते समय मांस मदिरा ये सब छोड़ दिलाएंगे, और हमारा भारत जो है तुम्हारा भारत ही है और रहेगा। लेकिन अभी ये जब तक आपने इन बच्चों का अभी नाम क्या कर लिया और क्या कराया और कुत्तों को हाथ में लेकर के रह रहे हो, तो आई थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। कुत्ता अच्छा है, बढ़िया है, उसको उनकी जगह रहनी होती है, और आप भी तो एक गाय का बच्चा आता है ना, तो घर में थोड़ी एक लोग एक 5-10 दिन के लिए एक वैसे हमारी गाय की बछड़ी है ना, कितनी अच्छी है, गाय की पूजा होती है और कुत्ता की पूजा करती है। तो हमारे भारत के अंदर क्योंकि देखिए कि आपको कहता हूं कि जितने विश्व के अंदर में सब कुछ जो हो रहा है खाना पीना बोलना सब, लेकिन केवल हिंदुस्तान जो है सनातन धर्म है वो सब कितना प्रार्थना करते हैं जो ये करते हैं सब कुछ करते हैं, कई साधु संत करते हैं बहुत, वही बस इसके अलावा और कोई है ही नहीं संसार में, कल कोई नहीं है। हमारे लोग जो गुजरात में जाते हैं अमेरिका में जाते हैं, हमारे इस गांव के घना हमारा बैठे लोग भगे बटे जाओ ऐसा जब वे काम करे बहुत करे
पूजा करे हमारे लोग वाले, और जो पहले वो मूसा खाने वाले थे ना वो भी छोड़ दिया कट्ठे अमेरिका में हमारे लोग कि अरे माँ ऐसा, तो वहाँ से छोड़ दिया, कहाँ से, यहाँ से, और वो जो है क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा रहना देना, तो मोदी जी साहब ने बहुत बड़ा कराया है, कर रहे हैं, और उन सभी का, इन सभी का वापस सनातन के अंदर में, सनातन सत्य सनातन, तो उसी तरह मेरा योग का अंदर मेरे जाने से, पर एक एक थोड़ा और कह देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत खराब है, खराब नहीं सॉरी टाइम कमी है। तो फिर किस क्या किया अभी उस करीब सारी ज़्यादा से ज़्यादा तो अब 20 साल या थोड़ी सी और। तो फिर मेरे पास में मेरे विदेशी लोग जो जा कर के गए कि स्वामी जी ये विदेशी में हमारे यहाँ गायों का वो रखते हैं, कैसे रखते हैं और पानी कैसे, और तो 5-6 आदमी आया, गायों ने देखा और अटल तो गाँव में है, गाय है ही नहीं, कुत्ता है ही जगह, तो सॉरी तो वहाँ पर देखो, ये बताऊँ आपको, उसमें आपने देख लिया हो और दूसरों को नहीं देख लिया है, तो वो क्या कि 5-6 आदमी गए तो वहाँ एक गाय

गाय को बिच्छी गाय हमको दुख बहुत दुख कर रहा है अभी बहुत दुख कर रहा है। तो उसमें क्या किया कि वो लोग बैठे थे तो उसको जा करके पांच छह सात आदमी दूसरे हैं ना वो काम करने वाले, वो क्या करते हैं कि वो बकरे का गाय का बछड़े को काट करके खाने लग गए। तो उस समय वो सभी मेरे विदेशी लोग थे, मेरा नहीं। तो उन्होंने कहा कि बाप जी मैं नहीं खाऊंगा, नहीं करूंगा, तो क्या कि हम कोई जानवरों को नहीं मारेंगे। उन सभी ने कराया कि कोई जानवर का गाय का भैंस का दूध वगैरह नहीं लेंगे, गाय का दूध रहेगा, भैंस का भैंस रहेगा, बकरी का बकरी रहेगा, कुत्ते का कुत्ता रहेगा, वो उनका है लेकिन उसका पानी उनका मत खाओ। तो अभी देख लो मैं करा रहा हूँ, और नहीं तो हम मैं तो हाल खा रही हूँ अपन दूध खाऊँ उन्हें अपन है, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे लोग अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, एवरीथिंग इन माई एवरीवेयर, तो वो लोग हैं उसको क्या कहते हैं वीगन। वीगन वेगन का नाम होगा आपके आपके पास में कोई, तो वो क्या है कि गाय का दूध घी मक्खन नहीं खाएंगे, मधुमक्खी का वो भी नहीं खाएंगे, गाय का उद्गा है जो वो है, और जो भी जानवरों का है नहीं वो उसका हम जो जानवर जो है जानवर खाने का उनका बच्चा है बस उनका ही है उनके हमें उनका नहीं हम खाएंगे। और क्या खाओगे कि वृक्ष के पास में जो भी है बढ़िया से बढ़िया है हमारे, तो केवल इसी को करो। तो आपने देखा नहीं वेगन है ना वेगन, तो वेगन उसके अंदर में आपने गांव में अट्ठे भी हैं तीन चार जगह में कटे, और ऑस्ट्रेलिया में ना दूर नज़दीक में जो है दूसरे पे है, तो वहाँ पर जो विदेशी यूरोप के हैं वो या अमेरिका में रहते हैं इधर रहते हैं वो वेगनर है वेगनर। और जब मैं कहता हूँ आप बोलो आप लगा देना और कह देना कि क्या हुआ है, जब हमारे यूरोप से हमारे भारत के लोग हमारे यहाँ आते हैं और जो दूसरे लोग वो भी यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाने के लिए कहते हैं, और वो वेगन वाला वो है नहीं वो कहते कि नहीं नहीं हमारे पास मांस नहीं हमारे को दो वेगन। देख लो आप मेरे साथ चलो मैं दे दूंगा बता दूंगा उसी दिन। इतना वो सभी मांस मदिरा सब छोड़ा दिया जानवरों को मधुमक्खियों को और सभी, और वो करके आते हैं और हमारे यहाँ जैसे आए तो बोली गणा है। और एरोप्लेन में बैठते हैं ना अरे कम से कम जाते खामा मांस और कहीं है यस यस मेरे साथ चलो आप देख लेना क्या होता है। तो वो करने से मेरे को सभी क्या उन लोगों ने भी कि महाराज जी महेश्वर बहन जी आपने क्या करा दिया और क्या करा रहे हो, मैं क्यों कहीं नहीं हमारा गांव है मेरा देश है उसको थोड़ा वापस लाना है, हमारी माँ है नहीं वो माँ रहेगी बेटा रहेगा सब रहेगा मांस मदिरा नहीं कराएगा। तो प्रार्थना करो तो शाम को बच्चे को उठ करके आपको बच्चों को उठ करके प्रणाम ना करें मंदिर में जाके बैठे सभी करें गणे करो जी बहुत ऐसी बात नहीं है खूब करते लेकिन खूब बार रहता ही है। तो इसीलिए योगा इन डेली लाइफ, तो योगा इन डेली लाइफ का मतलब सारे विश्व के अंदर सारे विश्व में। और अगर मेरा कहेंगे कि योगा इन डेली लाइफ तो कहें कौन है कहाँ से है कि आपका हिंदुस्तान का आपका है कि वो है, तो मैं तो कहूँगा आपका हिंदुस्तान का है हम करें करेंगे तो वो मेरे करेंगे मेरे को दे देंगे नहीं। इसलिए मैंने सभी को करके के योगा इन डेली लाइफ
एवरी डे प्रैक्टिस योगा.

0: एवरी डे प्रैक्टिस योगा, जैसे करना अब ऐसा ही भी देख, अगर वो योगा डेली लाइफ वाले लेकर है तब तो आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। और दूसरे क्या कि वो कोई आता है 5, 10, 20 हटे आवे, दो तीसरे दिन फिर आवे कोई, तीसरा परत जाए, आगे कठुआ जाए, तो वो ये अभी मैं देख रहा हूँ, आई नो दैट। बट ये महाराज जी है ना, भाई जी, इनके अच्छा चल करा है, इन्होंने किया है, बहुत अच्छा करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा लोग नहीं आवे, नहीं जने को ही करे दूजो ने वंदन घुमा गा दी। लेकिन मेरे अगर वो कोई आता है, अरे टाबर अटारो है, ने कह 10 साल की वट देखा जाओ किताब। तो इसी प्रकार मेरा यही है कि योगा इन डेली लाइफ सारे विश्व के अंदर भगवान के पास में और जानवर की रक्षा करें, हमारे भारत की रक्षा करें, हमारी भारत की रक्षा करें। तो हमारे जानवर, हमारे माता पिता है, बच्चे हैं, वो जानवर वालों का अंदर मत चलाओ, और उनको बच्चे हैं वो इना उनको करा दो, वो करो कोई मत करो, लेकिन वो एक घर के मार्ग में सामने सो करके कुत्तों के और कुत्तों के बकरी के वास में, या फिर एक बिल्ली है, थी बिल्ली भी तो खूब होती है, तो वो है उनके लिए दो, लेकिन एक घर के अंदर में जो है वहाँ नहीं जाना देना चाहिए। बोल श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव देवपुरी श्री महादेव की जय। माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति। हमारी भारत, हमारी भारत, हमारी भारत।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरु जी महाराज की
2: जय। He has established Vishwa Guru Deep Ashram Shodh Sansthan. He is working hard to bring to light the unpublished work of great Sanskrit scholar Pandit Madhusudan Ocha. Now, I humbly request
3: महामंडलेश्वर जी टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। पहले मैं हमारे प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी को बुलाता हूँ, थोड़ा 2 शब्द का 1 मिनट।
4: मंचस्थ विश्व गुरु स्वामी महाराज और उनके वट वृक्ष के नीचे बैठे सब लोग, सामने विराजमान देवी देवताओं, मेरे को चुके हैं या बड़ा टाइट प्रोग्राम था, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल अकस्मात मैं फेसबुक पे बैठ गया और मेरे हजार सैकड़ों मित्रों ने मुझसे प्रश्न किया था कि भाई मोबाइल टेलीफोन संस्कृति सारे विश्व को छा रही है, कब तक चलेगी? मैंने कहा नहीं चलेगी, एक तो मेरा उत्तर ये भी ऐसे समाप्त हो जाएगी कि सारी दुनिया बहुत चक्की ले जाएगी। नंबर 2 कि अभी जब तक चल रही तब तक हम लोग हेलो का हेलो हेलो करते हैं, इसका अल्टरनेटिव बताइए। मैंने कहा कम से कम भारतीय और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसका अल्टरनेटिव मिलता है, ओम कृपा करके ओम बोलिए जब जब भी टेलीफोन को उठाएँ या बात करें। नमस्कार, धन्यवाद।
3: अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबको तो इंग्लिश तो आती है, इसलिए हमारे विदेशियों भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी इंग्लिश में बात करूंगा। सो आई वुड लाइक फर्स्ट टू थैंक टू आवर गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरु जी महाराज, हु इज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ योगा इन डेली लाइफ इंटरनेशनल, श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल एंड मैनी अदर सोसाइटीज एनजीओज अराउंड द वर्ल्ड। So, Swami Madhavanand World Peace Council is also associated with United Nations as a special collaborative status, ECOSEC, and In this you saw, and we gave 5 awards, because the program was very short, so we did give 5 awards for the promotion of Indian culture, which means promotion of ancient culture and peace. So I would like to thank our main co-organizer, Apex University. The people, the father has many children, but the dream of the father is that the children outgrow him. So we have here the whole family, Junivaldi, and two brothers who are actually, when you search for Apex University, this is not only one institution, there are 9 institutions, so I would like to thank for their hard work in education, and that's why also we awarded them. Also our dear Raviji with the World Peace Award. Beside them is Vice Chancellor, who worked so many years in technological field, but what you don't know, he did his graduation, I think also PhD in Hungary in 1986. So this is connection, international connection already in many places. And we have the Major Sub, which is now major force in the connecting the international cultures and the Indian cultures, because India is basically the cradle of civilization. I know it's thought about this for the Middle East, but basically India is the cradle of civilization. And Major Sub successfully proved in so many European countries, in America and everywhere, that this is true. Now we have president of Rajasthan Sanskrit Academy, Dr. Saroj Kochar. She was working in education for so many years. Now she is the chairman of the Sanskrit Academy, and also she is working very hard in promotion of vegetarianism in India. Now this is very sad thing, because before, when I came 20 years back, there was very rare places which was written non-veg. Now there is no place where is this not written. So now it's becoming opposite. The craze for the meat, unfortunately, is taking over. And main point for the meat industry is that it's healthy. If the meat industry is healthy, then why there are so many hospitals in Europe and America? Just think on that. So we did, together with Apex University, Yoga and Daily Life Foundation, and our branch, Vishwa Gurudev Ashram Research Center, we did this small program of 3 hours here in the university. I would like to thank to our host and Gurudev for this opportunity. We had one more speaker, Pandit Mahesh Dattji. He is very famous scholar, especially in Sri Vidya and Ramayana, because you know that India is cradle of the spirituality. So there is connected with spirituality, this Professor Mahesh Dattji knows. And we have Virendraji Bansal. He actually started as an artist, and now he has a collection of 20,000 Pandulipis, the manuscripts, 20,000 old manuscripts, and when you go to his museum, unknown number of paintings, old paintings, old things, and so on. So we are thinking that also he joined this conference. So with this word, I would like also to invite all of you to, whenever you have time, to come to visit ashram, visit Om Ashram, and wish you all the best. Sri Dipnarayan Bhagwan Ki Jai.
2: I am honored to now request Dr. Ravi Junivan, Chairman, Apex University, to kindly convey our heartfelt gratitude to Maharaj Ji and all eminent scholars present here.

0: परम पूजनीय आदरणीय स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज साहब, अपेक्स यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पधारने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आपके द्वारा योगा इन डेली लाइफ, पीस, हार्मनी, वेजिटेरियन के लिए जो भी प्रोग्राम पूरे विश्व के लगभग 3 से 4 हज़ार सेंटर में जो चलाए जा रहे हैं, वो वास्तव में अपने आप में हमारे लिए एक प्रेरणादायी है। आप यहाँ पधारे, आपने हमें यहाँ पधार के हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, थैंक यू।
1: Now that today's ceremony comes to its conclusion, I would request everyone to proceed for prasad served and refreshments outside the auditorium. Thank you very much.
2: Kalyan Kalyan Mantri ke saath hum isko samapan karenge. Om sarve bhavantu sukhinah. Sarve Santo Dio.

0: विराजत।
1: ओम शलपुरजी महादेव की
2: जय।
1: देव देवेश्वर महादेव
2: की जय।
1: श्रीदेव नारायण भगवान
2: की जय।
1: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सुखदेव भगवान
2: की जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी योगराज
2: की जय।
1: नंदीश्वर भगवान
2: की जय।
1: शिव शंकर भोलेनाथ
2: की जय।
1: हनुमान पार्वती पते
2: हर हर महादेव।
3: शिव भगवान।

0: सतगुरु भगवान की
1: जय हो। बोल दे मामा, एक आध बोल दे, फिर जा
2: बताओ थे
0: बोल ले
2: नहीं। हां
0: ये हां।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधव माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरुदेव की जय।

0: दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वर सतगुरु देव की
1: जय।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सामना श्री परहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One. I have a little.

हिमालयं सिद्धावतार श्रीअलकपुरी जी महादेवा की जय। देवाधिदेव श्रीदेवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु परम

0: effect
1: és annak hatásai
0: of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
1: Puják és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi Panditji.
1: Köszöntelek benneteket, és Kapil Trivedi Panditjit.
0: Yes, Panditji, you are on the line. Floor is yours.
1: Panditji, tiéd a szó. So.
2: Sabse pratham, Gurudev ke chananon mein shat-shat vandan. Deep Narayan Bhagavan ki jai. Sadguru Dev ki jai. Aapka aur hamara sabka saubhagya hai ke Gurudev ke sanidhya mein, Gurudev ke aashirvaad se आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए, सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है, इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है, उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं. तो गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन प्रणाम. गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है. आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं.
0: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग, वी वर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस. अनुवाद करता हूँ. सो द पंडित जी सेठ
1: पंडित जी आसमंता
0: फर्स्ट ऑफ द एडोरेशन टू अवर गुरु परंपरा गुरुदेव
1: गुरु परंपरांक फेस्ट की तिस्तरतेत
0: देन सेड वी आर ऑल ब्लेस्ड वन.
1: Te mondta, hogy mind áldottak vagyunk.
0: That we are all here together.
1: Együtt lehetünk itt.
0: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
1: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
1: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
1: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
1: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
1: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So he said, "We are lucky."
1: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan, yagya, puja.
1: Havanát, yagyát, pujat fogunk gyakorolni.
0: And so, let's go. What he said in short sentences. Okay, थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं.
2: आप और सब हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे. यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं.
0: While making the yagya,
1: yagyát végzünk,
0: ceremonies, we will have an easy access to God.
1: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं,

0: जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है। अगर उस पूजन को, उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से, सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती है।
1: इन लाइफ मैनी टाइम्स देयर इज अप एंड डाउन,
2: életben sokszor fe és lefelé szállunk.
1: There are different circumstances, different kind of situations.
2: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
1: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
2: Jagják és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
0: ये एक प्रकार का विज्ञान है। यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है, उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है, और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं।
1: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस,
2: टू द मैन
1: वैदिक साइंस,
2: वैदिक टू द मैन
1: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज I told before, he mentioned.
2: A vastu sastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
1: Exactly, the yagya ceremony must be done in proper measurement.
2: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
1: And in the proper scale. East, west, north, south.
2: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
1: And that fireplace for the Yagya is like the mouth of the god.
2: Yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
1: And what the mantras is coming like from that supreme.
2: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
1: And how you will think and you will offer your ceremonies there, that will become fruitful for you, liberating you.
2: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
0: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं, मंत्र जो हैं वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं। अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है, और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है, और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
1: द स्क्रिप्चर्स, द वेदास, उपनिषद एक्सेट्रा, देयर मंत्रास विच influences the devas.
2: Iratok, a védek, upanishadok, bantrái hatnak a devakra.
1: Invite them.
2: Behívja őket.
1: And these mantras, these ceremonies is

0: asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
1: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
0: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
1: So this is not only just what we call a mantra and chanting, it is the science, it is Sanatan.
0: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, Sanatan.
1: It is eternal.
0: Örök.
1: Unchangeable.
0: Megváltoztathatatlan.
1: It is the truth.
0: Az igazság.
1: Is that scriptures?
0: Ez van az iratokban.
1: That granthas.
0: A grantákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
1: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
0: Az már önmagában
1: it
0: nagy...
1: is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
0: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahotta kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
2: Egy mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
1: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
0: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.
2: Dhyanamulam gurur murti.

कृपा। ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वो दौलत
0: ग्लोरी
2: दिचोइतेश
0: टू डिवाइन मदर
2: दिश्तन्यान्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

0: विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: Vishvaguru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva Ki Jaya.

श्रीदी प्लांट भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की ओम शांति।

नित्य प्रति सर्व प्रकार से बड़े उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरुदेव के चरण के कमे कोटि सत नमस्कार करके ये जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति गोति सह सो हम स्वाहा ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा सर्वर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे दीन कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे ओम अग्नेर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम अग्नेर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम अग्नेर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्यमोहिनी चामुण्डा महादेवी सुरासुरवन्दनी ह्रीं ऐं स्वाहा ॐ क्रीं कानेन्दीभेदनाय ॐ अग्नेर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ॐ अग्नेर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ीशं करानं महाकालकालं कृपानं गुणाङ्गार संसा

0: सतगुरु भगवान की जय हो।
1: बोल दे मैं एक आध बोल दे फिर जा
2: बताओ थे
0: बोल
2: दे
0: बोल ले
2: नहीं
0: हां ले ये

0: नींद खाली आ जाए,
1: नींद वाला व्यम कर दो
0: मुझे चलो थोड़ी काटी है महाराज काटी है
1: अरे भाई
0: वो दुबो
2: चलो आवाज बोलो साहब।

பிரம்மானந்தம் பரமசுகதம் கேவலம் ஞானமோர த்வந்தாதீதம் ககன சத்ருஷ்யம் தஸ்மஸ்யாதி லக்ஷ்யம் ஏகம் அநித்யம் விமலச்சலம் சர்வதிசாட்சிபூதம் பாவாதீதம் த்ரிகுணரஹிதம் சத்குரு தம் நமாம்யம். அதக்புரி ஜி மகாதேவ கீ, தேவாதி தேவ் சிவ ஸ்வரூப் தேவ்புரி ஜி மகாதேவ கீ, ஆராதி பகவான் ஸ்ரீ தீப் நாராயண் மகாபிரபு ஜி கீ, ஆராதி சத்குருதேவ் இந்து தரம் சம்ராட் ஸ்ரீ சுவாமி மாதவானந்தபுரி ஜி மகாராஜ் கீ, சனாதன தர்ம கீ, பக்த ஔர் பகவான் கீ ஜெய். ஆராத்ய குருதேவ் கே சபி பரம் பக்த தர்ம பிரேமி சஜ்ஜனோ, ஆஜ் கா தின் படா ஹி சுப தின் ஹை. குரு பூர்ணம் கா பர்வ, ஆப் சபி கோ ஓம் ஸ்ரீ அலக்புரி ஜி சித்த பீட பரம்பரா கி ஓர் சே ஆசீர்வாத். பிளெஸட் செல்ஃப், ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர்ஸ், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ரவுண்ட் த வேர்ல்ட், டுடே on this holy occasion of Sri Guru Purnima, blessing is coming from Om Sri Alakpuri Ji Siddha Peeth Parampara, Holy Land Bharat. Welcome all of you here and those who are in other countries. The Guru Purnima has many meanings. First, what Upanishad and Ved says, tamaso ma jyotirgamaya, lead us from the darkness to the light. அஜான் से ज्ञान की तरफ, आराध्य गुरुदेव श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान कहते थे, ज्ञानहीना पशु समाना, विदाउट नॉलेज वन इज लाइक ए एनिमल. Knowledge is the light, and ignorance is the darkness. The light of the knowledge is not this physical light which we see with our physical eyes, but it is the light which is within ourselves, in each and every entity. But out of 8.4 million different creatures, human have got a special body and got a powerful tool that's called intellect. But the intellect, புத்தி ஜோ ஹை, புத்தி கோ ஜான் வித்யா சாஹியே. புத்தி
को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा. What kind of education you will get like that you will be and you will think like that. In the police training, the policeman goes, he get the training for the police, how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver similarly चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं. आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे. और अगर वो कुरान उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा री बू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है हमारी बेटी है, तीसरे कहता हमारी बहन है, और दूसरा कहता है हमारी बुआ है, दूसरा कहता हमारे काकी है. आंटी नहीं है बेटा, आजकल कह के आंटी. ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो है. काका काकी माजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं. एक ही महिला है. नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है. बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन विच गॉड हैज नो नेम. And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education, we get in the Gurukul. Gurukul means school.
अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है। नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है। उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ा, नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी।

कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ा तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खाडा रे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को, आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिर झाड़ू लगावाने को नहीं लागे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है। तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पे अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है। हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो कि स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं कि राजस्थान में जाऊं कि मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रहे, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कह रहे मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी, कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं रेसी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नी ने रेसी सुथारी, आ होनारी परिजाई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन कहवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have very wished the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. Or महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई
गाड़ी चलाओ, कॉन्सेंट्रेशन करो। तो वो क्या, कौन सा स्टेशन? अरे बाप जी, कौन सा स्टेशन चल रहे हो? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी, सही बात है कि नहीं? इसलिए दैट्स व्हाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज ए गुरु पूर्णिमा एंड देन इज ए वर्शिप्ड ऑफ दैट डिवाइन हु गेव यू द नॉलेज। देन इज ए बर्थडे ऑफ भगवान वेद व्यास एंड एवरी डिसाइपल एडोर्स रिमेंबर्स टू कीप दिस लिविंग कल्चर। सो गुरु पूर्णिमा इज ए फेस्टिवल ऑफ द कल्चर, टू प्रोटेक्ट द कल्चर इज कॉल्ड ए लिविंग कल्चर। सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म। व्हाट डज इट मीन? व्हाट मीन्स द लिविंग धर्म? वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड, इट इज द धर्म ऑफ द मदर टू गिव ए बर्थ टू द चाइल्ड, इज हर धर्म, वो सनातन धर्म है। ए वन ट्री गिव्स यू फ्रूट, इट इज द धर्म ऑफ द फ्रूट ट्री टू गिव द फ्रूट। एक मां बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है। कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में, स्कूल के मास्टर आपके गुरु है। इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन, द रिलेशन ऑफ द मदर चाइल्ड हस्बैंड वाइफ नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयरफॉर द गुरु पूर्णिमा हैज ग्रेट मीनिंग्स देन अदर एनी फेस्टिवल्स। हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, वो एक ही जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वही। इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल। गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल, जिंदा। और सब संप्रदाय चली जाएगी, लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप आए, यू केम ऑल वेलकम। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत। तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा। कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है। तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना, के बाबू जी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा।

कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है, पर मां कोई नाग देवता बैठा हुआ है तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जको ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो। और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो। इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है, भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना, सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां से भी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी webcast and bhajans whenever you like, you can put on your television and you can see or hear the bhajan.

0: हमारे।
1: मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिना,
0: मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिना,
1: गंगाधर मृद मद नारे,
0: गंगाधर मृद मद नारे,
1: हर शि

0: ॐ श्री दीपनारायण भगवान की श्री देवेश्वर महादेव की हिंदू धर्म समर्थ श्री स्वामी माधवानंद जी सद्गुरुदेव की ईश्वर गुरु मंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की श्री दीपनारायण भगवान की
1: जय।

0: श्रीदीप नाम भगवान की जय, सिंहदेवानंद जी भगवान की जय।
1: थैंक यू एंड टुमारो विल बी मोर ओके
2: जितना सीधा उदासी
1: प्लीज कम।
3: There's a very powerful prayer which we hardly ever sing.
2: Je jedna velice silná modlitba, kterou málo kdy zpíváme.
3: Shri Satguru Bhagavan ki arati. Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai.

भगवान की जय। श्री माता वनंद होली गुरु जी श्री सत्ता गुरुदेव श्री दीप नारायण भगवान की जय।